0: पिता माता की आशीष निमुख न बिसरौ तुम कहो हर हर सदा पजू जगदीश सतगुरु तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत सतनाम श्री वाहिगुरु जी सूरठ महला पंजवा कर तीजा दुपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामदास सरोवर नाती सब उतरी पाप कमाती निर्मल हुई कर शनाना गुरपूरै कीने दाना रामदास सरोवर नाती सब उतरी पाप कमाती निर्मल हुई कर शनाना गुरपूरै कीने दाना सब कुसुर खेम प्रभ धारी सही सलामत सब थूक उबारी गुर का शब्द विचारी रहाउ साध संग मल लाथी पार ब्रह्म भयु साथी नानक नाम ते आया आदि पुरख प्रभ पाया साध संग मल लाथी पार ब्रह्म भयु साथी नानक नाम ते आया आदि पुरख प्रभ पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जत श्री कौर वालों सारे संगत का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी सारे आए साढ़े जातसी के पहले जन्मदिन से पहले जातसी राग दरबार से सारे दूरों नेरो सब तो छोटे बच्चों का जत्था तो लैके प्रोफेसर दलबीर सिंह ते उस्ताद जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी
2: पूरे परिवार का ते पूरे परिवार वालों भी हार्दिक धन्यवाद सानू इस राग दरबार ते वखरे शब्दां दा रिफ्लैक्शन दा वेला मिलिया इह साल किवें विचार कीर्तन ते संगत दे नाल लंघिया आने वाले साल भी हर साल होर रियाज कीर्तन दे विच घटे सानू पता है कि जातरी कौर भी तैयारी विच उड़ीक है कि कदों उसनू स्टेज दा मौका मिलेगा ताकि वह भी शब्द गायन कर सके आप सब असीसा दिओ जी जिन्हां दे मेल नाल वाहिगुरु जी दा नाम चित आंदा है
1: आप जी लंगर ते प्रिंसेस केक प्लीज छाट के जाना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
0: वाहिगुरु जी की फतेह

की जीत। श्री साहिब जी सुहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान।

परम सम्मान योग चुक चुक अटल चवर शतर तख्त दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठे गुरु रूप साध संगत जीओ आप सारे ही विड़पागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो साम दे दीवाना विच गुरबाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है वह विचार आपां सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। जिस शब्द दी आपां विचार कर रहे हां ये पावन शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे

आओ भुला गल तेरी मुआफी साध संग। वो जड़ा हरि परमात्मा है वह हर एक जगह त व्यापक मान है। भगत नामदेव जी कहते फिर इसे दी अगे रचना इसे का विस्थार गुरु नानक पातशाह महाराज ने किया। आपे रसिया आप रस पंचम पातशाह महाराज कलगीधर पातशाह महाराज गुरु तेग बहादुर महाराज भाई साहब भाई नंद लाल जी ने सारिया का ख्याल एको ही है। कहते परमात्मा हर एक थान पर है ता ही पातशाह ने सानू बाणी च लिख के दिता है जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाय। जे हर एक जगह ते हरि परमात्मा है ता ही बाणी अंदर लिख के दिता है ना जी। पर एक जगह ते परमात्मा नहीं है जा कह लिए छुपया होया। फिर जे एक जगह ते गुरु परमात्मा नहीं है फिर मन के अंदर सवाल खड़ा हो गया शंका पैदा हो गया फिर वो परमात्मा करण कारण समर्थ कहदा होया। जे एक जगह ते नहीं है नहीं हरि परमात्मा करण कारण समर्थ है पर एक जगह ते नहीं है वह भी सच है। वह फिर कि थां है वह है बंदे की सुरत साड़ी याद साड़ा चेता। असी दातां लैके गुरु नूं भुल जाने इत्थे गैर हाजिर है परमात्मा इत्थे एबसेंट है इत्थे नहीं है परमात्मा ये चेते नहीं करते असं इस तरह ही है ना सच्ची गल है ना इत्थे नहीं है बाकी सारिया थावां ते हाजिर है। अरदास करिया करो हे परमात्मा साडे जहन के अंदर भी तेरी याद वस जाए इत्थे इत्थे तेरी याद वस जाए तेरा नाम सिमर सिमर के तेरा नाम जप जप के तेनू याद कर करके ये जिहड़ा जीवन मिले है इनू असी सफल कर जाइए। आओ भुला गलती दी मुआफी अनंत साहिब दा जाप सारे मिलके पढ़िए।

वाहिगुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लय त्याय, प्रियंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई आय, जिस जिथे सब दुख जाय, तेग बहादुर सिमरिया करना उन्हें दया वेताए, सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी, आप जिया ने कृपा रहमत की है, अमृत वेले तो सोहने तख्तों के प्रकाश मनो के दर्शन दीदार बख्शे हैं, आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान की संपूर्णता उपरंत आप जिया के पावन स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है, सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है, बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना सच्चे पातशाह जी, कृपा करो आप जी अपनी सेजा ते विराजमान होवो, संगतां नूं खुशियां बख्शो, अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना, सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आमदा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। बोले सो निहाल

हर हर गुण कोहरे, सत गुरु के चरण तोए तोए पूजो, इन विद मीरा हर प्रभ लोहरे। रहाओ काम क्रोध लोह मोह अभिमान, बिखै रस इन संगत तू रहो रे, मिल सत संगत की जय हर गोष्ठ, साधु स्यों गोष्ठ हर प्रेम रसायन, राम नाम रसायन हर राम नाम, राम रमो रे अंतर का अभिमान, जोर तू किच किच किच जानता, इहो दूर करो अपन घोरे, जन नानको हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तू

बिसरी प्यास डानी अब गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेकत मन लपटानी देख दमोदर रहस मन उपजियो नानक प्रिय अमृत।

मन चाओ कर कृपा सत्संग मिलावो तुम देवो अपना नाओ रहाओ करो सेवा सतपुरख प्यारे।

नाथा की नाथ रहाओ सुत संपत भिख्या रस भगवत नेह निबत जम कै पाथ नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खा

रहाउ अधिक हर्त संसार सागर कर दिया चारों तुहर सत संग हर चरण बोयत उदरते लै मोहर गर्भ कुंड कुंट मैं जिने धारियो ने बिकै बन मैं होर हर सकत शरण समरथ नानक आन ही निहोर इदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रहन भे कल मलहान रहाव त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह रंत आसा झूठ सर प्रमान।

बस करे सब बल सदा सुख मन बसे दुख संसारे खोवे गुर नौनद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए

पर्वत पर भवन नहीं हो तो वह उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे सांग साए सुहावन चीत जो बैराए तसो प्रीत बलुआ के ग्रह भीतर वसे अंध खेल माया रंग रसे दृढ़ करमा ने मने प्रतीत काल नावे मुड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालो त्रो याहू जुगत बयाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर कर्म तू ठाकर तुम पैरदार जियो पिंड सब तेरी राज तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सूख कन्हेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देनहार पर छोड़ कै

जैसे सूर सब को सोग ब्रह्म ज्ञानी कह दिष्टमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीरजे एक ज्यो मसदा को खोदे को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नान ज्यो पाव का सह सुहाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैन लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होय प्रगास जैसे तारे ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कह नायो मान ब्रह्म ज्ञानी ऊचे ऊंचा मन अपने सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पै नान जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरी ना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर में आ ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृश्य

सुख सहज निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है। ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माए ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी।

उस पंडित कहे उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय वसावे सो पंडित फिर जो न आवे। वेद प्राण सिमरत पूजे मूल सुख में जाने अस्थूल चौं वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देस। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वरना में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साथ संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उधारे बस प्रेत मुक्त पात्र को तारे। सर्व रोग का उक्त नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत किते ना पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दिसंदन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास नर गए प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्मे तावे जीवन मुख सो कहावे तैसा अर्घ तैसा सो सदा आनंद ते नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अपमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जुगत नानक को पर किए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जिस जिद घर राखे तैसा तन्नाओ आपे करण करावण जोग प्रभावे सोई फन होग पसरियो आप होए अनंत तरंग लखे ना जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मद्दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर ना

भार मन में अब मन अपने माए नान कीमत कहन जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्या ने सच सच सच सब कीना कोड़ मदे किन विरले चीना भला भला भला तेरा रूप यत सुंदरिया पार रूप

संत का दुखी सदा मित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख न सुखते डरे, संत के दुखी को नाही ठाओ नान, संत भावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अद बीते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर से थोथा, ज्यों सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किस ना आए, आप बीज आपे ही खाए, संत के दुखी

ते सुखी एको एक एक बछाने ददगियो सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया तिने नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपना सुझे जिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जिस कह सर्व रोग त्यो हर जन रह ते अंदन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोए निर्वाण एक उपर जिस जन की आसा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक दिसन लागे दुख जिसको हर प्रमन चित आवे सो संत सुहेला नहीं लावे जिस प्राव अपना कृपा करे सो सेवक को किससे डरे जैसा सत ऐसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिजिया गुर प्रसाद तब सब जय जब देखो तब सब किस मूल नान सो सुखम सोई अस्तूल ना किस जन्मे न किस मरे आपन चलते आप ही करे आपन जावन दृष्ट अन दृष्ट क्या कारी तारी सब शिष्ट आपे आप सकल में आप अनक जुग द्रज थाप्यो था अविनाशी नाई किस खंड धान धार्यो ब्रह्मंड लख भेव पुर प्रताप आप जपाए तनानक जाव जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सकल संसार उदरे तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक धूप सारण आपे मेल कृपाल गुर का सब जापे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़भागे नाम जब तावे विश्राम नान तिन पुर को उत्तम कर मान जो किस करे सो प्रभ के रंग सदा बसे हर संग सह सवाय होवे सो होए करने हर बचाने सोए प्रभ का किया जन्म हीठल करना जैसा सा तैसा दिष्टाना जिस ते उपजे तिस माए समाये उस सुख निधान उनु बने आए आप उसको आप दिनो मान नान प्रजन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरता जन हार जाके सिमरन उदरी है नान तिस बलिहार अस्पदी टूटी गांडन हार गोपाल सर जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माए तिस ते बिरता कोई नाए हरे मन मेरे सरार जावे अवनासी प्रव्यापे आप अपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए तिसमें नाही तेरे किस काम गात नानक जाप एक हर नाम रूप बंत होए नाही मोए प्रभु की जोत सकल कट सोए तनवंता होए क्या को करबे जा सबके दिसका दिया दरबे असुराजे को कावे प्रभु की कला बिना कहता वे जे को होए बेदतार तिस दिन हार जाने गवार जिस गुर प्रसाद उठे और रोग नान सोजन सदा रोग ज्यो मंदिर को था मैं थमण त्यो गुर का शब्द मने अस थमण ज्यो पखाण नाव चढ़ते रहे प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे जे अंधकार दीप दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन होए विगास जो माम ध्यान में मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संदन की बाछो तूर नानक की अर लोचा पूर मन मूरख काय बिलाई है प्रभु लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभु देवनार अवर त्याग तू दे चार जोग करे सो इसको मान भूला का

जन्म रे सो काचो काचा आवा गुण मिटे प्रभ सेवा त्याग शरण गुरुदेव। एहो रतन जन्म का होए उदार, हर हर सिम प्राण आधार, अनक पावन छूट नारे, सिमर सास्त वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वांछित नानक फल पाए। संग न चाल तेरे तना तू क्या लपटावे, मूर्ख मना सुत मीत कुटाम्ब, आर बनता इनते कहो हो, तुम कवन सुनाता राज रंग माया विस्तार, इनते कहो हो कवन छुटकार। आस हस्ते रथ सवारी, झूठा डम झूठ बसारी, जंदी ये तस बुझे नाम गाना, नाम सा नान बजताना, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बो डूबे सने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिक जाए, आप जपो अपरा नाम जपावो, संत गैत रैत गत पावो, सार भूत सदार को नाओ, सह सुभाए नान गुन गाओ, गुन गाव तेरी उतर समैल, बिंस जाए हमे बिग बैल। होए चंद विशेष कुनाल, सास ग्रासन नाम संभाल, छाड़ सियाण सगली मना, सा संग पावे सच धनार, पूंजी संच करो व्यहार, इया सुदर गय जयकार, सर्व निरंतर एको दे, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जब एको सलाह है।

सुन समाद बैर विरोध के संकुमाद जब इसका वर्ण चेन न जापत तब हर शोको से व्यापत जब आपने आप आपार ब्रह्म तमो कहा सोद परम अपन खेल या वर्ती जा नानक करने हर न दूजा जब हो प्रभ केवल धनी तब बंद मुख को कुछ को गनी जब एक हरगम पार तम नर सुर को कौन अवतार जाब निर्गुण प्रभ सहसुआ

हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहया जाए हुक्मे होवन जी हुक्म ले वड्याई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मे बख्शी सो एक हुक्मे सदा पुआई है

तीर्थ नामा जित पावा बिन पाणी के नाय करी जित सिरठ उपाय वेखा बिन कर्मा के मिला लई।

असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सूरमो पाख सार असंग मोल लाए तार

स्वासारबाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मनचाओ कवण सुवेला भगत कवण कवण थित कवण वार कवण सरुति महा कवण जत हुआ आकार वे न पाया पंडित जय हो वे लेख पुराण

भुगत ज्ञान दया भंडारण कड़कड़ वाजनाद आप नाथ नाथी सब जाके रिस दे अबरा साध।

चकर बकर फिरे चतर चक मानी प्रतीन लोक चौदह के विखे जग जापी जय जाप आ देवनाथ मूर्था प्यो सबे जताप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सरचियो स्वंभु कण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत भूत लख भेष

मुन गण प्रणाम निर्वैन काम आदत प्रचन मित गत घन लिशा करम दिशा धर्म सर्व प्रणांडिया अंडन बाड़िये जासी शांत प्रसाद।

मुक्ता सर्व मुक्ता रसाव छंद प्रसाद नरक नाशे देम प्रगासे नंगन स्वरूपे भंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्व साते समा सदा सर्व साते आगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पोतरे न पुत्रे न सतरे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साकं सरी कैं मितो अमी कैं

नमस्तल प्रणाम समस्तल प्रणाश गंजलनामे समस्तल निवासी काम विभूते समस्त स्वरूपे कुकर्म प्रणाशी सुधन विभूते सदा सच्चिदानंद सदृण प्रणाशी क्रीमल कुनंदा समस्त

सदायंग संगे अपंगं विभूते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं दवाय प्रसाद सोई है। सराब शुद्ध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सदाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखे तो प्राण पति के

मन में कर पर्वत पंक हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते तंगन मान मलेंगे श्रीपद से भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर पार बंडे बरियार विचारे सार की तार पछैया तोरत देश मलंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े ग्राण के दोन हार सुबत्तन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन सचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में तल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के वह पुंज खपेंगे साध सू प्रसन्न फिरे जग सदर सवे अवलोक चपेंगे मानवेंद्र गजेंद्र नराथ जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट शनान गजाद गदान अनेक सोम्बर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश विष्णु सचिव पद अंत बसे जम फास भरेंगे जे नर श्री श्री

जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवे वाच बेनती चौपे अमरी करो हादे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चन मारे हमारा अपना जान क्रोध पारा हमरे दुस्सवे दूंगा वो आप दे मोह बचावो सुगे से मोर परवारा से उसे सबे करतारा मोर छान कर दे करिये सब को आसंगरिये पूर्ण होए हमारी आशा दूर भिन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अपना त्याहूं जो पर चाहूं सो तुम ते पाऊं से सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आभा दै मुझे वरिये मन काल का त्रास नवरिये हूँ जो सदा हमारे पच्छा श्रीय तुझो करे और अच्छा राख लियो मोय रखनारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंदन के अंता तुम हो पुरीश दर्द स्कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजी अवतरा काल पाए गर्भसन प्रकाशा सगल काल का किया तमासा जमन काल जोगी सब की हो वेद राज ब्रह्मा ज्योति हो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे मारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंते कै अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सुवारी सिवकुन को सब गुण सुख दियो शतरन को बल मोहद कियो कट कट गए अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछांत चीटे दे कुंचर स्थूला सब पर कृपा दिशकर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट गए पट पट की जाने

कहवत सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पे हो राव के भूपा अंड जेर से तिजगिनी उतुज खान बोरा दीनी कहो भूल राजा वह बैठा कम सुन प्यो संगर कैटा सगरी सिर दिखाए चंबव आज आसरू स्वंभव आप रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संग करो दुष्ट जितय उठवत उत्पाता सगल मलेश करो रण खाता जे तुता सन्नी परे तिनके दुष्ट दुख वह मरे पुरख जवन बप परे ते हरे तिनके तम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आई है ताके काल निकने हैं रक्षा होता है सब काला दुष्ट रिष्ट काला कृपा दिशन जान हरियो ताके ताप तन मोहरियो रिद सिद कर्मो सब हो दुशास वे सके न कोई।

मन वसावे। नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द घनेरे कहे नान सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुआईया कर शांत सुख मनाया वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुरबान किया गुरु विटो जिस दिया ए वडियाईया कहे नान सुनो संतो शब्द रूपे आरो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवास किते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तु जिनको से नाम हर के लागे कहे नान तैस गुआ ते तकारे आनंद वाजे। साची लिवे बिंदे निमाणी दे निमाणी लिवे वाजो क्या करे विचारिया तदबास समृत कोई नाए कृपा कर बनवारिया एस नाओ थाओ नाए शब्द लाग सुवारिया कहे नानक लिवे वजो क्या करे विचारिया नंद नंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारा कर कृपा गिलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिनका मोह टुटा तिनका सब सच्चे सवारिया कहे नानके आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे तां सो जन दे जिसनू होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले थे फिर दैसिक नाम ला सवारिया गुरु प्रसादी मन पया निर्मल।

नच नच हसै चल है सिरोई उठ ना जाहि सिद्ध ना होय नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पहुत।

देह निमाणी लिवे बाजो क्या करे विचारिया तुद बाद सिमरत कोय नाए कृपा कर बनवारिया एस नाउ थाउ नाए शब्द लाग सुवारिया।

क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए तिवे चले, जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा, जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे।

पिता कुटुंब सहित सिम पवित्र संघ सभाई कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नान से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया कर मी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा ना जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन धोवो शब्द लागो अरसों रहो हो चित लाए कहे नान गुर प्रसादी सहज उपजे।

जिन मन की इच्छ पूजाई नानक दास्ता कै बलिहारै जिन पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

गया ते आप सारे जाणू हो गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी दा सिर कलम करके शहीद किया गया। भाई मनी सिंह जी का बंद बंद कटिया गया, भाई तारू सिंह जी का खुपर लाया गया, भाई सुबेग सिंह, भाई साहबाज सिंह ते होर गुरु दे पतवंते सिंह, गुरु दे बड़े सिंह रंगरेटे उन्हां नूं भी चरखियां ते चाड़ के शहीद किया गया। नौवें पातशाह जी की शहादत हुई, दसवें पातशाह जी का समा आया। आप सारे जाणू हो आनंदपुर साहिब का 8 महीने घेरा पिया रहा, बहुत सारे सिख शहीद हुए ने। गुरदेव पातशाह जी ने आनंदपुर साहिब का किला छड़िया, चमकौर की गढ़ी च पहुंचे ने। पहला सरसा के कंडे ते जिथे दीवान सजाउंदे ने उत्थे शहादत हुंदियां ने। फिर चमकौर की गढ़ी विच आप सारे जानते हो वड्डे साहिबजादियां ने शहादत का जाम पिता। छोटे साहिबजादियां ने सरहिंद विच शहादत का जाम पिता, शहीद कर दिता गया। हुण होर अगे चलिए, समा आया 18वीं सदी का समा आया है, 1746 का समा आया है। जकरिया खान जिहड़ा भाई तारू सिंह जी दी खूपर लिखाउंदा है, आप सारियां नूं पता है कि इस जकरिया खान का हाल की होया सी, इसकी मौत किवें हुई सारे जानते हो। भाई तारू सिंह जी दी जुत्ती इहदे सिर ते वज्जियां, ओ वज्जदियां वज्जदियां इहदी मौत होई। इसे जकरिया खान का बेटा है याहिया खान। उस समय उहदे कोल समय की हकूमत है, समय की बादशाहत है। उसदे कोल दो दीवान ने, एक जसपत राय ते एक लखपत राय। ये दोनों नूं भी यह हुक्म है भी जिथे तुहानूं सिख मिलन जां सिखां दी हिमायत करन वाला कोई मिले उसनूं जां तां मार दिता जावे, नहीं तां उसनूं जिंदा फड़ के लियाया जावे। मार्च महीने दा समा है, तकरीबन 1000 सिंघां नूं फड़ के लाहौर दे नखास चौक ते शहीद किया गया। नखास चौक ते जिथे भाई साहब भाई मनी सिंह जी नूं बंद बंद कट के शहीद किया गया सी। उस दिन इस लखपत राय नूं यह गल कही गई सी भी यह तुहाडा सोमवार का दिन है, मस्या का दिन है, इस दिन तुसी सिखां नूं शहीद ना करो, यह तुहाडा पवित्र दिहाड़ा मन्निया जांदा है। पर इसने एक ना गल मन्नी, ए कहण लग पिया, कहण लगे एक खत्री ने यह सिख धर्म यह शुरू किया है, आरंभ किया है। कहण लगे मैं भी खत्री हैगा, मैं इस धर्म नूं बिल्कुल खत्म कर देंगा। पर साध संगत जी, इस खालसे नूं कोई खत्म नहीं कर सकता। जालमा ने बड़े जतन किते ने, पर गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने यह उजा खालसा साजिया कि रहिंदी दुनिया तक इस खालसे नूं कोई खत्म नहीं कर सकता। ते फिर नाम बड़े कमाल दा दिता, खालसा अकाल पुरख की फौज। यह किसी की फौज नहीं, यह तो उस अकाल पुरख वाहिगुरु की फौज है। ते फिर जिहड़ा परमात्मा वह किसी तो नहीं मारिया जा सकता, जिहड़ा परमात्मा आप अमर है, सदी भी रहने वाला है, सच जानियो फिर उहदी फौज खालसे नूं भी कोई खत्म नहीं कर सकता। समा आया, सिख घरां तों बाहर जाण लग पए, भोले भाले सिखां ते भी तसद्दद हो रहे, जिन्हां सिखां दा कोई भी दोस नहीं, जिहड़े जंग भी नहीं लड़दे, दिने अपना कार विहार करते ने, शाम नूं अपने परिवार नाल बैठ के लंगर पानी छक के सौंदे ने, उन्हां ते भी इन्ने अत्याचार हो रहे ने कि जिथे भी सिख मिल जाण उन्हां नूं मार दिओ, क्योंकि सिखां दे सिरां दे मुल पए ने। ताई तां इह सिखी सोखी नहीं मिली,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਜਾਣੀਓ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਬੜਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੱਗ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਖਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ

आधार है प्रभ शरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। एक टेक गोविंद की, राम जना को राम भरोसा, उस एक दा आसरा, एक दी टेक, इको दी ओट जिन्हां दे मन विच वस जांदी है वो किसे दूसरे दी मुथाजी नहीं करदी। उन्हां दे अंतर आत्मे हमेशा ये पंक्तियां चलदियां ने, जां तू मेरा वस वल है तां क्या मोहसंदा, तुद सब किश मैनू सौंपिया जां तेरा बंदा। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई, बट हमारा तड़ा हर रहा समाई। कोई किसे नाल तड़ा बनाउंदा है, कोई किसे नाल कि मेरे तड़े विच ज्यादा पावर है, कोई सोचता मेरे तड़े विच ज्यादा समर्था है, पर गुरु प्यारियो जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या किजै, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या किजै, जिस दे वल गुरु हो जाए ओदा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कोई किन्नी भी समर्था दा मालक होवे,

कुर्वन् तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। बलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक रई त्याई। फिरंगत गुरते अमरदास राम दासे होइ सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमराम श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनाउन दे आवे ताई। सब थाई होइ सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। सब थाई होइ सहाय। दसवां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान तरके। बल जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपिया वंड की छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडिठ कीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके। बल जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिया नाल तरवाए सिखी सिदक केसां स्वासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके। बल जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके। बल जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी का वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेता वै चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रख्या रिया देग तेग फतेह बिरद की बैज रहे पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बबल बैले। बलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान बसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा संभालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो। निमाणियां दे माण सतगुरु नेताणियां दे ताण नियोटियां दी ओट नियासरियां दे आसरे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ अरदास बेनती है गगन दमामा बाजियो परिओ निशाने कहाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छाड़े खेत सतगुरु छोटे कल्लू कारे दे च शहीद सिंह सिंगड़ियां पचंगियां दी मिठी प्यारी याद मनाउंदे होया अज दे विशेष दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच अमृतमई बाणी दी शब्द कीर्तन कथा विचारां होईयां बाणी पढ़दियां विचारदियां अनेकां भुल्लां हो गईयां हुण गईयां अलपग जान के खिमा करनी है ते धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे शहीदी पुरब दे संबंध दे विच समूह संगतां वल्लों श्री सुखमनी साहिब दे जाप हो रहे सतगुरु जी सेवकां दी सेवा प्रवान करी दरों करों नाम दान सिखी सिदक भरोसे दी दात बख्श के कृतार्थ करना पावन दरबार दी हाजरी भरदियां गुरसिख परिवारां वल्लों अरदासां बेनतियां ने दर घर दे सेव बच्ची अजूनी कौर दे जन्म दिन दी खुशी अंदर परिवार वल्लों चढ़दी कला लई अरदास बेनती है बच्ची दे सिर ते रहमतां भरे हथ रखना तंदरुस्तियां दी दात बख्शिश करनी अंग संग सहाई होना सरदार राजपाल सिंह ढिल्लों की तंदुरुस्ती लई परिवार वालों अरदास बेनती है सतगुरु जी मेहर करनी भाई लखबीर सिंह वालों परिवार की तंदुरुस्ती चढ़दी कला वास्ते अरदास बेनती है भाई रजिंदर सिंह दे बीबी भुपिंदर कौर समूह परिवार की तंदुरुस्ती चढ़दी कला वास्ते अरदास बेनती करते हैं सतगुरु जी रहमत करनी सेवक परिवारों के सिर ते रहमतां भरे हथ रखना परिवारों में सुख शांतियां चढ़दियां कलां की दात बख्श के कृतार्थ करना
ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਰਾਗਿਆ ਬਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ

नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयो गुरु सारी साध संगत जीओ, तनता दे योग हो अमृत वेले तो लैके अश्वलिता गुरु दरबार दियाँ हाजरियां भर के अमृतमय बाणी दे शब्द कीर्तन कथा विचारां गुर इतिहास सरवण करके अपने जीवन दियाँ अनमोल कड़ियाँ तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी दे अंदर बैठ के शिकार्थ कर रहे हो। सतगुरु जी रहमत करन आप समूह संगतां दियाँ हाजरियां दर प्रवान करन, दरों करों अमृत वेले दा जागरना नामदान सिखी सिदक भरोसा दान सरबत नूं सतगुरु जी चढ़दियां कलां दी दात बख्शिश करन। सो इत्थे दीवान दी समाप्ति है, पुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।